ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यू स्टार्ट माहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। गुटरस ने कहा कि दोनों जौहरी ताकतें अपने ज़खायर को बढ़ा रही हैं और उन्हें जदीद बना रही हैं, जबकि दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी गलतियों और गलत फहमियों के ख़तरे को भी मज़ीद बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल न सिर्फ जौहरी असलहे से लैस ममालिक बल्कि पूरी आलमी बरदरी को ख़तरे में डालती है। अमरीकी अफवाज इराक में अपने आखिरी अड्डे छोड़ रही हैं। इनखला के अमल के आखिरी मरहले के तौर पर जो 2003 के हमले के दो दिहाइयों से ज़्यादा अरसे बाद शुरू हुआ था, ये इनखला सदर जो बाइडन के दौर में 2024 में तय पाने वाले एक माहिदे के बाद हुआ है। खत्ते में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान शदीद कशीदगी के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानब से ये अमल किया जा रहा है। दो दिहाइयों के दौरान वहाँ 4,500 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में हलाकतों की तादाद तकरीबन दुगनी है। इराकी अवाम में जान नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हौलनाक है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताती हैं कि तकरीबन 1,85,000 और 10,00,000 के दरमियान इराकी हलाक हो चुके हैं। फौजियों ने पहले 2011 में मुल्क छोड़ा, फिर 2014 में दाश दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ इराक की लड़ाई में मदद के लिए वो वापस आए। गजा में भर में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक और बच्चों समेत कई दूसरे ज़ख्मी हो गए हैं, जो गुज़िश्ता अक्टूबर से नाफिज़ुल-अमल अमरीका की क़्यादत में जंगबंदी के माहदे की ताज़ा तरीन दस्तावेज़ी खिलाफ वर्जियाँ हैं। जबालिया के मशरक़ में वाक़ हलावा कैंप में बेघर ख़ानदानों पर एक ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 8 ज़ख्मी हुए, जबकि गजा शहर के अलकुफ़ाह महल्ले में एक रिहायशी छत पर होने वाले दूसरे हमले में 1 फ़लस्तीनी हलाक और दीगर ज़ख्मी हो गए। तिब्बी अमले ने इस बात की भी तस्दीक की कि अलनसर मोहल्ले में एक रिहायशी इमारत पर हमले के बाद बच्चों समेत 2 लाशें और कई ज़ख्मी अलशिफा हस्पताल पहुँचाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की फ़ौज की जानब से रियासत रखाइन के शुमाली कस्बे क्योकताओ में एक दिन पहले किए गए फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हो गए। दी अरावती अखबार ने गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट किया कि फ़ौज ने पीर को शुमाली रखाइन के कस्बे क्योकताओ में एक पुल और मार्केट पर हमला किया, जो इस वक्त एक अपोजिशन ग्रुप के कंट्रोल में है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि इस हमले में तकरीबन 58 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। एक फ़ौजी जेट तैयारे ने कसा पनादी या काला दान पुल और एक पुरहजूम बाजार को निशाना बनाया, जिसे इंडियन मार्केट कहा जाता है, जहां हलाक और ज़ख्मी होने वालों में पैदल चलने वाले खरीदार और मजदूर शामिल थे। दरियाए कालादान के किनारों पर वाक़ साहली कस्बे क्योकताओ पर इस हफ्ते का यह हमला बर्मी जुनता के रहनुमा मिन ओंग हलायिंग के रवां साल अप्रैल में सदर मुंतखब होने के बाद अब तक के मोहलक तरीन हमलों में से एक है। म्यांमार सालों से एक तवील खाना जंगी का शिकार है, जिसमें फरवरी 2021 में मिन ओंग हलायिंग की जानब से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मजीद शिद्दत आ गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई नस्ली मुखालिफ ग्रुप्स मिन ओंग हलायिंग की हुकूमत के खिलाफ लड़ रही हैं। रियासत रखाइन बुनियादी तौर पर रोहिंग्या बरादरी का मस्कन है, जो कि एक मुस्लिम अक्सरियती ग्रोह है, और उसे म्यांमार की फौजी हुकूमत के साथ साथ दीगर मुखालिफ ग्रुपों की तरफ से भी जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता सालों के दौरान लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को इस बुद्धमत अक्सरियती जनूब मशरकी एशियाई मुल्क से बाहर निकलने पर मजबूर किया जा चुका है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: फ्रांस में जमातों में हद से ज्यादा हुजूम और असातिज़ा की कमी की वजह से शुरू होने वाले तलबा के एहतजाज मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कई दिनों से जारी इन मुजाहरों से कम अज़ कम 400 स्कूल मुतासर हुए हैं, जबकि पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान 440 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें अक्सरियत नाबालिगों की है। पेरिस, लिल और दीगर कई शहरों में सड़कों पर निकलने वाले तलबा और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। फ्रांसीसी हुकाम ने बताया कि मंगल के रोज़ होने वाले मुजाहरों में 48 सिक्योरिटी अहलकारों के साथ साथ कम अज़ कम 10 असातिज़ा और मुतादद तलबा जख्मी हुए। यह एहतजाज सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा की कम उजरतों को और काम के नामुनासिब हालात के खिलाफ की जाने वाली एक वसी हड़ताल के दिन ही सामने आए हैं। फ्रांसीसी वजीर आजम सेबेस्टियन लेकोर्नो ने मुजाहरों में शिद्दत लाने को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि वजीर दाखिला लॉरिन नुनेज ने पुलिस की कार्रवाई का दिफा करते हुए इसे मुतनासिब करार दिया। दूसरी तरफ तलबा के नुमाइंदों ने हुकूमत पर पुलिस के जरिए जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। और इसराइली रोजनामा वाई नेट के मुताबिक दुबई से तल अबीब जाने वाले एक मुसाफिर तैयारे के पायलटों के दरमियान मुबैना लड़ाई के बाइस हाई जैकिंग का कोड मुतहरिक हो गया, जिसके बाद बुध के रोज तैयारे ने सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की। वायनाट ने बताया कि तैयारे को बिन गुरियान एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस परवाज में 174 मुसाफिर सवार थे और उसने कुछ देर के लिए खतरे का सिग्नल भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट में होने वाली तकरार और झड़प के दौरान मुमकिन हाईजैकिंग की निशानदही करने वाला कोड फाल हो गया था। इसके बाद तैयारे ने सऊदी अरब के तबूक हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। अखबार ने बताया कि टेक ऑफ के तकरीबन 90 मिनट बाद उर्दून की फिजाई हदूद में दाखिल होते वक्त तैयारे ने आम हंगामे सूरत हाल का बैन अवी कोड 7700 भेजा। उसके बाद तैयारे ने कोड 7500 मुंतकिल किया, जो कि तैयारे के साथ गैर कानूनी मदाखलत बशमूल मुमकिन हाई जैकिंग की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन उसी वक्त तैयारे ने अपना रुख बदला, सऊदी फिजाई हदूद में वापस आया और ममलिकत के ऊपर कम बुलंदी पर परवाज करने लगा। इब्तदा में जुनूब की तरफ बढ़ने के बाद तैयारा सऊदी फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए मगरब की तरफ मुड़ा और फिर ममलिकत में लैंड कर गया। इसराइल चैनल 12 ने बाद में कहा कि ऐसा लगता है कि यह वाकया सलामती से मुतालिक नहीं था और हुकाम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया पायलट और को पायलट के दरमियान बहस की वजह से खतरे का सिग्नल नादानिस्ता तौर पर मुतहरिक तो नहीं हो गया था। ब्रॉडकास्ट ने बताया कि फ्लाइट अमला एक रूसी पायलट और एक यूक्रेनी को पायलट पर मुश्तमिल था।
2: तुर्की के रवान साल के पहले 8 महीनों के सियात आदादोशुमार का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की सकाफत और सियाहत की वजारत के आदादोशुमार के मुताबिक जनवरी था अगस्त के अरसे में तुर्की का दौरे करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 3,48,26,000 से तजावज़ कर गई है। कुल जायरीन की तादाद 5,15,00,000 के करीब पहुँच गई है। साल के 8 माह के अरसे में तुर्की में सबसे ज्यादा सयाह भेजने वाला मुल्क 47,17,000 अफराद के साथ एक बार फिर रूस रहा। रूस के बाद 43,91,000 सयाहों के साथ जर्मनी और 27,00,000 के साथ ब्रिटानिया दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। 8 महीनों के मजमू आदादोशुमार में 1,25,00,000 से जायद सयाहों की मेजबानी करते हुए इस्तांबुल पहले नंबर पर रहा। सिर्फ अगस्त के महीने के जायजा लिया जाए तो 25,00,000 गैर मुल्की जायरीन के साथ अंताल्या सरफहरिस्त रहा। इसके साथ ही सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुए।
1: तो लीजिए सामीन, अब फुंदा अरार की आवाज में एक तुर्की नगमा सुनाते हैं।

तस्वीर करें कि एक इंसान रात के घुप अंधेरे में बाहर निकलता है। उसके हाथ में कोई नक्शा नहीं है, कोई कुतुब नुमा नहीं है। वो मस्नूई सैयारे जो आज दुनिया को हमारी उंगलियों की नोक पर ले आए हैं, अभी तक ईजाद नहीं हुए थे। लेकिन जब वो अपना सर ऊपर उठाता है तो वहाँ मौजूद होते हैं सैकड़ों हजारों रोशनी के नक्कात। इस लम्हे इंसान ने अपने आप से जो पहला सवाल पूछा वो ये था कि मैं कहाँ हूँ। मौजूद सामीन, इंसानियत ने आसमां को सिर्फ हैरत और तारीफ से नहीं देखा, उसने उसे पढ़ना एक जबान की तरह समझना सीखा। क्योंकि बाज़ औक़ात आसमान ज़मीन का सबसे बेहतरीन और बेऐब नक्शा होता था।

हिप्पोक्रेट ने इसे इस्तेमाल किया। इब्न सीना ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा और बहुत से लोग आज भी इस तरीकाकार का सहारा लेते हैं। कफ थेरेपी 4000 साल पुराना शफायाबी का तरीकाकार है, लेकिन कोई इसे अनाड़ी करता है तो भी शफायाबी के बजाय आपको सेहत के संगीन मसायल दरपेश हो सकते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं कि किन चीजों पर ध्यान देना है और इसे कैसे करना है। हालिया वर्षों में लोग अपनी सेहत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की तरफ तेज से रुझू कर रहे हैं। इस जस्तजू के हिस्से के तौर पर रवायती तकमीली तिब्बी अमल दरामद हर गुजरते दिन मजीद तवज्जो हासिल कर रहे हैं। एकोपंक्चर और योंग थेरेपी से लेकर अरोमा थेरेपी और जोन थेरेपी तक वसी तरीकाकार का इहाता करने वाले रवायती तकमीली तिब्बी अमल न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी मजबूत जिंदगी के तवाज़ुन के लिए भी हल पेश कर सकता है। इन तरीकों में से एक कपिंग थेरेपी है। ये मश जो हाल ही में दोबारा मंजरेआम पर आई है आज बारीकबीनी से जांची जा रही है। आज हम हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के उमरानिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान एरसोई की तरफ से इस मौजू पर टीआरटी खबर को फराहम करता मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिंग थेरेपी, जिसे अवाम में हजामा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तारीख तकरीबन 4000 साल कदीम है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोई इस तवील रवायत की वजाहत इस तरह करते हैं। इल्म तिब के बाप दादा हिप्पोक्रेट और कदीम रोमन मालिश गैलन ने अपने तरीकों में हजामा का वसीब मन पर इस्तेमाल किया। इब्न सीना की मशहूर किताब अल कानून फिल तिब में हजामा अमल पर तफसीलन बहस की है। ये अमल जो पहले शीशे के कप से किया जाता था, डिस्पोजेबल कप के साथ सरंजाम दिया जाता है। अच्छा, तो ये अमल कैसे सरंजाम पाता है? एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोई ने इसकी तफसील कुछ यूं बयान की है। हम जिल्द को वैक्यूम करते हैं, इससे जिल्द पर एक गुंबद नुमा ढांचा बन जाता है। अगर हम इस मरहल पर रुक जाते हैं तो हम इसे ड्राई कपिंग कहते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ा सा चील लगाते हैं, यानी अगर हम एक स्केपल को हल्का सा कट लगाकर वहाँ से खून निकालते हैं, तो फिर इसी जगह को दोबारा वैक्यूम करते हैं। इसे गीला कप या फिर अवाम में हजामा कहकर पुकारा जाता है। अब ये एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ चलते हैं, यानी मुस्तंद पेशेवर अफराद की तरफ से की जाने वाली